नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब, जय माता दी, जय श्री राम। दोस्तों, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी एडलेट को 103.1 FM भारतीय प्रसारण का ये हिंदी कार्यक्रम मेरे यानी विनोद बिस के साथ। इस कार्यक्रम को आप ऑनलाइन भी सुन पा रहे हैं www.5bbi.com.au पर। आज तारीख है 31 मई, साल का 5वां महीना और अंतिम दिन। समय हो रहा है 3:30 और बार है रविवार। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं पहले ये गीत और उसके बाद हमारी बात जारी रहेगी आप लोगों से। हम हर समय कोई बाहर से ही थोड़ी लेके आते, कभी कभी हम आपसे भी जरूर बात करेंगे, लेकिन सुनते हैं ये गाना।

मित्रों, मौसम भी आजकल बड़ा सुहाना हो रहा है। कभी धूप कभी छांव हो रही है। सर्दियों का मौसम है, बहुत गुदगुदाहट होती है कि जब आप अपने काम से घर पहुंचते हैं, शाम को गर्मा गर्म चाय पीने को मिलती है और उसके बाद आप अपने परिवार के साथ खाने पे बैठते हैं तो दिल करता है कि कितनी देर रजाई के अंदर एक दूसरे को आवाज देते रहे, अजी सुनते हो, ऐसे ही चलता रहे ये जीवन। और ऐसे ही हम अपने समय समय पर आने वाले अपने जीवन में जो भी हमारे उतार चढ़ाव आते हैं उनको सेलिब्रेट भी करते हैं। अभी हमारे इस हिंदी रेडियो के जो चेयरमैन हैं डॉक्टर के कुलश्रेष्ठ साहब जो हैं, उन्होंने अपनी 69वीं शादी की सालगिरह मनाई है अभी परसों 27 तारीख को। हमारी और आप सबकी तरफ से देवेंद्र कुमार सर जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और ईश्वर उनको स्वस्थ जीवन दे। आज मैं अपनी तरफ से और आपकी तरफ से प्रेषित कर रहा हूँ ये शुभकामनाएं। आशा है डॉक्टर साहब हमारी इन शुभकामनाओं को एक्सेप्ट करेंगे। और सुनते हैं एक और गीत और उसके बाद हमारी और आपकी वार्ता जारी रहेगी। बने रहिए आकाशवाणी एडिलेड पर।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एडिलेड पर भारतीय प्रसारण का ये हिंदी कार्यक्रम मेरे यानी विनोद बिस्ट के साथ। इस कार्यक्रम को आप ऑनलाइन भी सुन पा रहे हैं www.5bbi.com.au पर।

ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एडलेट पर भारतीय प्रसारण का हिंदी कार्यक्रम मेरे यानी विनोद बिस के साथ। इस कार्यक्रम को आप ऑनलाइन भी सुन पा रहे हैं www.5bbi.com.au पर। मित्रों, जैसे मैंने कहा, मैं सदैव मेहमानों को ही नहीं आपको भी इस मंच पर आमंत्रित करता हूं। आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि हमारे इस रेडियो कार्यक्रम में आप क्यों नहीं शामिल हो जाते, क्योंकि हम बात करते हैं भारत की, हम करते हैं भारत के एक एक राज्य की, चाहे वो पंजाब हो, गुजरात हो, हरियाणा हो, उत्तराखंड हो, चाहे कर्नाटक है, चाहे आंध्र है, चाहे तमिलनाडु है, चाहे महाराष्ट्र है। हर राज्य का हर प्रतिनिधि यहाँ पर आ सकता है, अपनी बात को रख सकता है, अपने राज्य की बात, अपने संस्कृति, जो हमारे भारत में विविधता में एकता की जो एक कड़ी बनी हुई है, उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए विश्व के कोने कोने पर हम बात कर सकते हैं अपने भारत की, अपने स्थानीय मुद्दों की। तो ये तो बात रही आप और भारत में चल रहे IPL का जो टूर्नामेंट है, उसका अब समापन आज होने जा रहा है। आज मुकाबला होगा रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और गुजरात टाइटंस के बीच में। पिछला सेकंड जो नॉकआउट मैच हुआ था, उसमें राजस्थान और गुजरात का मुकाबला हुआ था। वैभव सूर्यवंशी जो होने वाले एक बहुत होने वाले नहीं जो आज एक सितारा बन चुके हैं, 15 साल की उम्र में विश्व के क्रिकेट में एक डंका बजा चुके हैं। अभी हमारे ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों ने भी उनको दावत दी है और कहा है कि हम ऐसे खिलाड़ी को अपने धरती पर खेलते हुए देखना चाहते हैं, कि उससे भी हमें मुकाबलों की उम्मीद है कि वो ऑस्ट्रेलिया की धरती पर भी ऐसा ही खेलेंगे। तो ये तो रही बात क्रिकेट की। अभी हम सुनते हैं एक और गीत और हमारी बातें जारी रहेंगी।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे आकाशवाणी एडिलेड को 103.1 FM भारतीय प्रसारण का हिंदी कार्यक्रम मेरे यानी विनोद बिस के साथ। इस कार्यक्रम को आप आगे भी ऑनलाइन सुन पाएंगे www.5bbi.com.au पर। अब समय हो रहा है आपसे इजाजत लेने का। अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए विनोद बिस को। नमस्कार, प्रणाम।